0: ரெயின்போ எஃப்எம் 101 புள்ளினாலே இங்க எல்லாமே தூள்.
1: தொடர்வது போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 111 டெல்லி அஞ்சல்.
2: स्वागत करती हूं साथियों. जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में पूजनीय बापू को याद किया है, गांधी जयंती का उल्लेख किया है और साथ ही उस मंत्र की एक बार फिर से हमें याद दिलाई है, जो मंत्र पूरे देश को तो एक साथ जोड़ता ही है लेकिन हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान को हमारे इतिहास से, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ता है. एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने आप में अथाह समुद्र जैसा, स्वच्छता. आज का हमारा कार्यक्रम बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, स्वच्छता. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू का किन शब्दों में उल्लेख किया है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है. हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं. ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं. सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है. हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं. कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं. इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है. मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं. हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं. यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं. साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है. कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया. यही तो जनभागीदारी है. बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है.
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और स्वच्छता के बारे में. आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमें स्वतंत्रता से पहले जो मंत्र दिया गया था, क्या आज भी वो हमारे लिए कारगर है? आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनका समाधान हमें बीते समय में मिलता है? और किस तरह से बापू का जो दर्शन है, महात्मा गांधी का जो चिंतन है, वो समसामयिक है? आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ को, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी. आप गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं, आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से आप जुड़े रहे हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के संपादक रहे हैं, गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक भी हैं. डॉक्टर राजीव रंजन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: जैसा कि हमने अभी सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जो विचार हैं उनका उल्लेख किया है, स्वच्छता जो मंत्र हमें दिया गया है फिर से हमें उसकी याद दिलाई है और हमें ये कहा है एक तरह से कि हम इससे जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखें. लेकिन बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, तो इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी. आप ये बताएं कि गांधी जी ने स्वच्छता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा?
4: दरअसल गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां से कोई 22-23 साल अपना जीवन बिताने के बाद हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने

0: भारत का भ्रमण किया था।
1: जी
0: यह सलाह थी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की, और यह भ्रमण उन्होंने तीसरे दर्जे में किया था। रेलवे में तब तीसरा दर्जा होता था। वे कांग्रेस के कार्यालयों में जाते थे। उन
1: जी
0: दिनों आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी,
1: तत्कालीन
0: तत्कालीन
1: कांग्रेस
0: कांग्रेस की।
1: जी
0: और कांग्रेस के कार्यालयों में, कांग्रेस के अधिवेशनों और सम्मेलनों में होने वाली गंदगियों की तरफ भी उनका ध्यान गया था। 1916 में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गांधी जी गए,
1: जी
0: तो उससे एक दिन पहले वे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने नोट किया कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाने की जो गलियां हैं वे बेहद गंदी हैं। गांधी जी ने उनके ध्यान में आया कि अगर कल अंग्रेज चले भी जाएं तो क्या बाबा विश्वनाथ की गली साफ हो जाएगी? क्या अंग्रेजों ने उन गलियों को गंदा किया है? जब वे कह रहे थे तो उनके ध्यान में था कि दरअसल हमारे यहाँ गंदगी फैलाने और गंदगी की सफाई करने, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है, एक द्वैत है। तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक व्यक्ति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा और बुनियादी जरूरतों को नहीं समझेगा, बुनियादी दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक उसको स्वराज के आंदोलन से जोड़ा नहीं जा सकेगा।
1: जी
0: तो गांधी जी ने जो भाषण किया था उस भाषण में इस सवाल को उठाया था और ये जिक्र किया था। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि वो लिया होगा विचार गांधी जी का। उन्होंने
1: जी
0: पूछा उसी भाषण में, और उस भाषण में देश भर के सारे राजे रजवाड़े आए थे। 1916 का बनारस में दिया गया गांधी जी का वो भाषण उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके पूरे दर्शन को समझने की लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने पूछा था युवाओं से, सबसे, कि अपनी गंदगी के लिए हम दूसरे को कब तक जिम्मेवार ठहराएंगे, और अपनी काहिली या अपनी अकर्मण्यता के लिए क्या हम अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे? और तभी
1: जी
0: उन्होंने ये सवाल किया था कि कल के डेट में अगर अंग्रेज चले गए तो जिस बाबा विश्वनाथ को हम इतना पवित्र और अपना आराध्य मानते हैं, क्या उनकी गलियां साफ हो जाएंगी? ये गलियां हमने गंदी की है।
1: तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह से गांधी जी ने स्वच्छता को सामाजिक सुधार का भी एक माध्यम बना दिया था?
0: दरअसल था ये कि हमारे यहां एक फर्क था। जो लोग गंदगी की सफाई में जुड़े हुए थे वो दरअसल एक पूरा सामाजिक तबका था, और जो गंदगी फैलाते थे उनको श्रेष्ठ, और जो गंदगी की सफाई करते थे उनको हेय मानने की रवायत थी हमारे यहाँ।
1: जी
0: गांधी जी दरअसल इस पूरे दर्शन को, इस पूरे विचार को ही बदलना चाहते थे। इसी में जुड़ा हुआ था उनका विचार, जो दार्शनिक स्तर पर समझ में आता है, कि शरीर का श्रम और बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, दोनों एक ही लेवल पर माने जाने चाहिए।
1: जी
0: ये नहीं कि बौद्धिक श्रम करने वाला श्रेष्ठ है और शारीरिक श्रम करने वाला निकृष्ट है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो हमारे समाज में किन्हीं कारणों से जो ये चली आ रही थी परंपरा, जिसमें एक खास सामाजिक समुदाय को, लोगों को लाद दिया गया था कि यही लोग गंदगी की सफाई करेंगे, तो इसको वो पलट रहे थे।
1: जी
0: तो दरअसल गांधी जी ऐसा करके एक समता पर आधारित समाज के निर्माण की कोशिश में भी लगे थे, भले ही वे इस बात को सीधे तौर पर कहते हों या न कहते हों।
1: जी बहुत रोचक बातचीत ये हो रही है। मैं आपसे बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं?
0: एक फिल्म है तूफान और दिया, मन्ना डे साहब ने उस गीत को गाया है।
1: जी
0: गीत का बोल है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
1: जी
0: जी
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है और एक संदेश भी हमें देता है। लीजिए, हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू के विचारों का, उनके चिंतन का और स्वच्छता का उल्लेख किया है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, गांधीवादी चिंतक और विचारक आप हैं, लेखक हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका के आप संपादक भी रहे हैं। राजीव जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो शायद बापू के जो संभाषण रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिए, जो संवाद किया जनता से, वहां से वो प्रेरित हुए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी जी के चश्मे को ही एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान गांधी जी के स्वच्छता के सपने को जन जन तक पहुंचा पाया, उसे साकार कर पाया?
1: अगर आप 1915 और उसके पहले सफाई को लेकर जनता के बीच चेतना के प्रसार को अनुपात के तौर पर या तुलना के तौर पर देखेंगी तो एक

0: परिवर्तन दिखेगा।
1: जी
0: सामान्य और जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लोगों को लगता था ये बहुत छोटा और मामूली विषय है, और इसी मामूली विषय को गांधी जी ने तब उठाया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उसी विषय को जिक्र करके और उससे खुद को जोड़कर भी
1: जी
0: केंद्र में ला दिया था। और जब एक सामान्य विषय माने जाने वाले मसले को, मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश देश का कोई बड़ा नेता करता है तो जाहिर है उसका असर अखिल भारतीय होता है। और चूंकि ये बहुत सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से भारत सरकार ने इसको चलाया था और देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे जोड़ा था, तो इस वजह से भी बड़े पैमाने पर ये प्रसार हुआ। दूसरा, ये समय वही है जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में कचरा इकट्ठा हो रहा था, कई तरह के ई कचरा भी और सब कुछ, तो ये एक तरह से सही समय पर लिया गया फैसला भी था जिससे जनता उसके प्रति भी या निकट भविष्य में आने वाली अस्वच्छता के तमाम आयामों को भी साफ करने के प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, तो इसका असर तो हुआ ही है निश्चित तौर पर।
1: जी, जैसे आपने ई वेस्ट की बात की तो ये सही है कि वर्तमान समय में हमारी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, या उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, एक तरह से हम सभी उसके शिकार हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच में गांधी दर्शन से क्या हमें कोई समाधान मिलता है?
0: देखिए, असल में ये जो चुनौती है ये पूरे विश्व की है
1: जी,
0: और आप उसको दूसरे शब्दों में चाहें तो कहें कि ये पूरे मनुष्यता के भविष्य पर खड़ा हुआ सवाल है, प्रश्नांकन है। तो ये जो चुनौतियां, ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है जिसके वजह से प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी चिंता बढ़ रही है
1: जी,
0: उपभोक्ता संस्कृति की वजह से ऐसा लगता है कि सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी और हमारी मनुष्यता का क्या हश्र होगा।
1: जी,
0: उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी समाप्त हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ओजोन में छेद होता जा रहा है, उसका सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसी ही बनी रहे और इससे बेहतर हो, तो विकल्प के तौर पर दिखेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही। उन्होंने सुझाया था और उनका वो विचार दुनिया भर के लोग, अब के इन्वायरमेंटलिस्ट इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बहुत बेबाकी के साथ कि इस नेचर में, इस प्रकृति में दुनिया के सारे लोगों की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरी नहीं कर सकती ये प्रकृति। तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, जहां दरअसल हम अनावश्यक ढंग से आवश्यकता पैदा करते जा रहे हैं, मुनाफा के चक्कर में कुछ चीजों के आविष्कार होने के बाद उसकी जरूरत विज्ञापनों के जरिए या अलग अलग तरह के पीयर प्रेशर के जरिए उसको पैदा किया जा रहा है, तो रास्ता तो वही है। अगर आप सुकून का जीवन ये मनुष्यता चाहती है, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र और दुनिया के स्तर पर भी, तो जाना तो पड़ेगा उसी दर्शन के पास। और दरअसल ये दर्शन भारत की आर्ष परंपरा का निचोड़ है। हमारे यहाँ आप ध्यान दीजिए, पुराने समय में जो महान जिनको हम मानते थे वे सारे ऋषि होते थे
1: जी।
0: आप उनकी जरूरतों की वस्तुएं या उनके भोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं बेहद सीमित होती थी, यानी जो सबसे कम कंज्यूम करता था वो हमारी परंपरा में सबसे महान माना जाता था
1: जी।
0: पर एक उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ पूंजीवाद के विकास के बाद, और उसके बाद आवश्यकता से अधिक जो अधिकाधिक उपभोग करने लगा उसी को बड़ा मानने का चलन हमारे यहाँ मौजूद हो गया। तो दरअसल ये दो तरह की सभ्यता दृष्टि है, दो तरह की संस्कृति दृष्टि है, और गांधी की दृष्टि वो पुरानी भारतीय ऋषि परंपरा से जुड़ती है, जहाँ कहती है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, जितने से आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसको अब मिनिमलिस्ट कहा जा रहा है, तो आप उसको अगर जी सकते हैं तो उतनी ही वस्तुओं का उपभोग आप करें, नहीं तो आपका अपना ही जीवन संकट में पड़ेगा, और अंततः आपका अपना जीवन जो संकट में पड़ेगा वो आपकी भावी पीढ़ियों के लिए और दुनिया के लिए, मनुष्यता के लिए एक संकट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा
1: जी। इसीलिए शायद हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं उसका अनुपात हमें सही रखना हो, तो कहीं ना कहीं इन सब के मूल में गांधी दर्शन आ ही जाता है। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया के बारे में। राजीव जी, हम कैसे सोशल मीडिया के युग में गांधी जी के विचारों को और फैला सकते हैं या समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये विचार समसामयिक हैं?
0: दरअसल

0: हमें देखना ये होगा कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मायने में अभिव्यक्ति दे दी है
1: जी,
0: और अब उसकी अभिव्यक्ति का दायरा उसके अपने कमरे और अपने आस पड़ोस के लोगों की बजाय ग्लोबल हो सकता है। तो गांधी जो हमेशा सिखाते थे कि आप किसी के विचार से भले ही असहमत हों
1: जी,
0: पर उसके प्रति सहिष्णु हो, आप अपनी असहमति को भी सलीका में दर्ज कराएं
1: जी,
0: आप जब तक किसी सत्य को न समझते हो न जानते हो तब तक उसको अभिव्यक्त न करें, यानी पहले अपने अंतर मन में तमाम स्रोतों से उसकी जांच पड़ताल कर लें
1: जी।
0: ऐसा नहीं करने की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को जो आधा अधूरा या गढ़ा हुआ सच मिल रहा है, तथ्य मिल रहा है, उसको लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं और उस पर अपना विचार रख रहे हैं, उसके आधार पर अपनी पक्षधरता तय कर रहे हैं और उस वजह से एक बड़ी खेमेबंदी और मुश्किलें पैदा हो रही है और समाज में नफरत का प्रसार हो रहा है
1: और विचारों का उथलापन भी
0: बिल्कुल
1: हर जगह।
0: बिल्कुल, तो गांधी सिखा रहे हैं, दरअसल उनकी बुनियाद में है अहिंसा और सत्य
1: जी।
0: तो आप चाहे जितने अहिंसक हों, आप चाहे जितने किसी से असहमत हों, पर अपनी अहिंसक भाषा में उसको दर्ज कराएं और उस व्यक्ति के प्रति आप घृणा न करें। आपके दर्ज कराने का मतलब उसकी अंतर चेतना को परिवर्तित करने की हो कि आप अपनी बातों से उसको प्रभावित कर पाए। एक बिहार में पैदा हुए शायर थे कलीम अजीज
1: जी,
0: उनकी एक पंक्ति है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए
1: जी।
0: तो ये जो कहने का सलीका हो, यानी आपकी बात आपके तर्क भरे ही कठोर हो पर आपकी भाषा और उसको अभिव्यक्ति करने का ढंग मधुर हो
1: जी,
0: वो कोमल हो, यही गांधी जी करते भी थे। गांधी जी पूरा जीवन जिस साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उनकी भाषा में कोई बेअदबी हो। वो आपको दिखेगा कि वो उनको भी एक मित्र के तौर पर संबोधित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उनके मन में ये भावना है कि ये आज हमारे प्रति अनुदार है लेकिन इसके भीतर भी किसी ईश्वर का अंश है, तो मेरी बात से आज न कल उस पर असर होगा और वो भी अपने को पहचानेगा और फिर इसी क्रम में एक बेहतर दुनिया बनेगी
1: जी।
0: तो ये जो सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर फैलाया है, कहीं कहीं अच्छा और कहीं कहीं बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर इसका दिख रहा है, तो दरअसल गांधी जी का विचार सचेत करता है हम सबको जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सबको, कि आप किसी भावावेग में कोई बात उस पर न तो कोई अक्षर उस पर दर्ज करें और न तो कोई वाणी अपनी अभिव्यक्त करें
1: जी। यानी जो हमारे यहाँ श्रवण, चिंतन और मनन की परंपरा है उसके बाद अपना विचार रखें, उसे भी आजमाएं। और आपने कहा कि हम जो हैं वो सत्य का साथ भी ना छोड़ें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी कि गांधी जी का जो सत्य का सिद्धांत है, क्या वो आज के समय में, आज की जो दुनियादारी है जिसे हम कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होना है हमें, उसमें वो कितने प्रतिशत तक शामिल हो सकता है? और जो हमारे युवा हैं, हमारे जेन ज़ी हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है ही कि आपको सोशल मीडिया में भी अपना एक अंश रखना है, एक बहुत बड़े से आकाश में आपको अपना हिस्सा भी सुरक्षित रखना है, जिसे हम कहते हैं बीइंग वोकल, कि आपके लिए कोई और बात नहीं करेगा, आपको खुद को स्थापित करना है, इस प्रेशर के साथ ये सत्य का सिद्धांत लेकर हम कितना चल सकते हैं, कैसे सामंजस्य होगा?
0: दरअसल चाहे जितनी दुनियादारी और प्रैक्टिकल किस्म की बातें हों, पर जो शाश्वत बातें हैं, मसलन क्या करुणा का स्थान कम हो जाएगा
1: जी?
0: जैसे करुणा का स्थान नहीं कम होगा, जैसे प्रेम का स्थान नहीं कम होगा, वैसे ही चाहे हम मानते हो कि ये दुनिया बहुत लफाजी, बेईमानी और जोड़ तोड़ की है, बावजूद इसके सत्य की अपनी महिमा बरकरार ही रहेगी
1: जी।
0: आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल रास्ता वही है। हम दुनिया भर के लोग अगर गलत चीज को तवज्जो दे रहे हों तो ये तो नहीं मान लेंगे कि गलत ही सबसे बड़ा मूल्य है
1: जी।
0: दुनिया भर के लोग बेईमानी के सहारे आगे बढ़ रहे हों तो हम ये तो नहीं मान लेंगे कि बेईमानी ही सबसे बड़ा वैल्यू है
1: जी।
0: चूंकि ये जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसको हम

0: कहते हैं कि दुनियादारी सीखनी है, तो ये दुनियादारी अच्छाई के रास्ते से भी जाती है। और अगर आप तात्कालिक न देखें, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में सोचें,
1: जी
0: तो अंततः सफल वही होता है जिसके रास्ते में सच्चाई हो, जिसके
1: जी
0: मार्ग में सच्चाई हो। दूसरी बात जो वोकल होने की है, गांधी जी यही तो कर रहे थे। भारत के उन तमाम निर्बल लोगों को और वाणीहीन लोगों को उन्होंने निर्भयता का पाठ पढ़ाया और उनके कंठ को वाणी दी। तभी तो वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सामने आकर सीना तान कर खड़े हो जा रहे थे।
1: जी
0: जिस गांव समाज के लोग सिपाहियों की लाल पगड़ी को देखकर भाग जाते थे, वे उनके अधिकारियों के सामने अपनी आजादी की बात करने लगे थे।
1: जी
0: तो गांधी जी का दर्शन किसी को वोकल होने से नहीं रोकता, बल्कि उस वोकल होने में उसके अपने दायित्व को जोड़ने की बात करता है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेवारी को लेकर भी वोकल हो और उसके प्रति भी सचेत हो।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी समझाया कि किस तरह से हम गांधी दर्शन से ही बहुत सारे समाधान पा सकते हैं। यहां मैं आपकी पसंद का एक और गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूं।
0: जी, देश प्रेमी फिल्म का गीत है,
1: जी
0: मोहम्मद रफी साहब जी ने गाया है, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको।
1: जी
2: लाल

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यानी स्वच्छता की। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरे। राजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम बहुत से कामों के लिए आज तकनीक पर निर्भर हैं, बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, ऐसे में निर्माण भी है, ऐसे में पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं हम एक तरह का समझौता भी करते हैं, वनों की कटाई है या फिर जल जो है या हमारे इस तरह के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। गांधी दर्शन हमें इस बारे में क्या सिखाता है, तकनीक और गांधीवादी विचार जो है उनके बीच में कैसे सामंजस्य होगा?
1: दरअसल गांधी जी के बारे में जो कई धारणाएं उनका कुपाठ करती हैं या उनको अवमूल्यित करती हैं, उनको नहीं समझती है, उसमें एक विचार यह भी है जो आपके सवाल के जरिए आ रहा है और ये लगभग दुनिया के ज्यादातर लोगों के मानस में है
0: जी।
1: गांधी जी तकनीक के विरोधी नहीं थे। दरअसल वे तकनीक और तकनीक में फर्क करने की बात करते थे। मैं आपको दो उदाहरणों से बताता हूं। जिस सेगल ने सिलाई मशीन की खोज की थी, गांधी जी उसके बड़े प्रशंसक थे और वो कहते थे कि सिलाई मशीन के आविष्कार के पीछे कारण था उस व्यक्ति की पत्नी जो सुई से दिन भर सिलाई करती थी और उससे जो उसकी आंख और उसके हाथों में पीड़ा होती थी, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए सिलाई मशीन एक तकनीक के तौर पर और उस समय के लिहाज से वो बहुत मॉडर्न तकनीक रही होगी
0: जी,
1: उसका उसने आविष्कार किया। तो दरअसल गांधी जी कहते थे कि जिस तकनीक के आविष्कार के पीछे कोई प्रेम है या मनुष्यता के प्रति प्रेम है, जिससे आपके काम में भी सुविधा हो, आपका उत्पादन भी बढ़े और उससे किसी पर अत्याचार न हो रहा हो, किसी के हक को आप छीन नहीं रहे हो, वैसे तकनीक का वो समर्थन करते थे। एक दूसरा उदाहरण दूं, गांधी जी के साथ हमेशा चरखा रहता था। चरखा अपने आप में तकनीक है। 1925-26 का साल है जब गांधी जी ने 1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था चरखा की तकनीक के विकास पर काम करने के लिए।
0: उस समय एक लाख
1: आज के हिसाब से आप सोचिए। और अंबर चरखा कहा जाता है, दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है, वहां वो चरखा रखा हुआ है, 11 पैडल का चरखा है वो। ये गांधी जी के कहने पर खोजा गया। आप सोचिए, आज से कोई 102 साल 101 साल पहले 100 साल पहले
0: जी,
1: जिस चरखा में 11 पैडल की चरखा की, अंबर चरखा की खोज की, उन्होंने बात की और उसको आगे बढ़वाया, वो अपने आप में तकनीक है।
0: और पेटी चरखा भी तभी तैयार हुआ कि ले जा सकते हो
1: सब कुछ जो लैपटॉप की तरह है। तो आप देखिए, सारे तकनीक हैं। बस उनका कहना ये था कि ये सारे तकनीक अधिकाधिक मनुष्यों को काम देने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हो,

0: जी
1: तकनीक इसलिए न हो कि कोई मुनाफाखोर उसका अधिकाधिक हिस्सा ले पा रहा हो और उस देश की, उस राष्ट्र की या दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के हाथों को काम से वंचित कर रहा हो। यानी वो तकनीक और मनुष्य के श्रम के संयोजन से एक विकास का मॉडल गढ़ रहे थे
0: और कल्याण की भावना,
1: और कल्याण उसमें जो जाहिर है अंतर्निहित है उसमें कल्याण, अंतर्निहित है उसमें प्रेम, अंतर्निहित है सारे हाथों को मिलने वाला काम भी। लेकिन इससे कठिनाई भी नहीं होनी है। जो श्रम कठिन है, जैसे जो सिलाई मशीन में या एक चरखा चलाने में जो कठिनाई है और कम उत्पादन है, तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ मनुष्य के हाथों को मिलने वाला काम हम अगर देखेंगे तो दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तभी तो विकसित होगा जब उसके मानव संसाधन को, सारे हाथों को काम मिले। तो ये मॉडल दरअसल गांधी जी का मॉडल है। और इसमें फिर हमको ये नहीं लगेगा कि हमको आधुनिक तकनीक और गांधी के बीच कोई समन्वय बनानी है। दरअसल गांधी के हिसाब से सारे लोगों की प्रगति के बारे में अगर हमारे मन में चिंता है तो अपने आप हम तकनीक को पुनर्परिभाषित कर लेंगे और उसको संयोजित कर लेंगे।
0: जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, मौजूदा सरकार जो है वो समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा या सम्मान या उनके अधिकारों को लेकर क्या हमें गांधीवादी दर्शन से भी कुछ दिशा मिलती है, नीति निर्माताओं को कुछ उससे सीख मिल सकती है?
1: जी बिल्कुल। दरअसल आप देखिए, अगर गांधी जी के आश्रमों की बनावट पर गौर करेंगे
0: जी,
1: तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो उस समय का वहाँ का नेता हो या श्रेष्ठ व्यक्ति हो या सामाजिक पदानुक्रम में किसी भी तबके से आता हो, उस सबको संडास की सफाई से लेकर कचरे की सफाई करनी होती थी। दरअसल एक समुदायगत सफाई कर्मचारी की धारणा को गांधी जी ने झकझोर दिया था, हिला दिया था और बड़े स्तर तक तोड़ दिया था
0: जी।
1: फिर भी एक बड़ी कमी रही हमारे यहाँ, और सफाई के काम के लोगों के प्रति लंबे समय तक राज और समाज दोनों का रवैया उपेक्षापूर्ण था। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है जो गांधी जी कभी ख्वाब के तौर पर देखते थे। उसकी सीमाएं बेशक अभी भी होंगी क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और व्यापक है, पर ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो उसमें तकनीक के आविष्कार की चीजें हैं, उसको वहां फिर से लागू करने की बातें हैं, उससे बेशक उनके जीवन में भी अंतर तो आया है। उस अंतर को भी स्वीकारना होगा, पर अभी भी उन चुनौतियों या उन सवालों या अभी भी उससे वंचित लोगों के प्रति भी सचेत रहना होगा, राज को भी और समाज को भी, व्यवस्था को भी।
0: जी, और अनेक अवसरों पर हमने देखा भी है कि श्रमजीवी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, फिर जिन्होंने श्रमदान किया है स्वेच्छा से ही सही या जिनका वो कार्य है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो या फिर उनके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाना हो, तो शायद अपने व्यवहार से भी प्रेरित किया है समाज को कि वो सबको साथ लेकर चले और हर कार्य का एक सम्मान जो है वो अपने व्यवहार में दिखाए। जी राजीव जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, हम कहते हैं कि चाहे हम पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अपनी शिक्षा की बात करें, सबके मूल में किसी न किसी प्रकार से स्वच्छता है ही, वो इनका केंद्र बिंदु है। कैसे ये सारी चीजें स्वच्छता से जुड़ी हैं?
1: दरअसल हम एक चीज मानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और सृष्टि की सारी चीजें आपस में ऑर्गेनिकली, अवयविक रूप से संबद्ध हैं।
0: जी,
1: आप कहीं भी एक चीज, आप इसको ऐसे आप व्यक्ति के शरीर के हिसाब से सोचें तो आपके किसी भी शरीर के अंग में कोई भी छेद होता है, कोई दिक्कत आती है तो पूरे शरीर को उसका कष्ट होता है, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही सफाई का सवाल हमारे यहाँ लंबे समय तक व्यक्तिगत सवाल माना जाता था। हम अपनी, हमारी जितनी परंपरा थी पूजा पाठ की, व्रत अनुष्ठान की, उसमें ज्यादातर में अपने शरीर की सफाई और अपने घर की सफाई पर बल था। गांधी जी ने चिन्हित किया था कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपनी सफाई करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर उन गंदगियों को पाट देते हैं। तो दरअसल उन सार्वजनिक स्थलों को वे अपना नहीं समझते, इसीलिए ऐसा करते हैं
0: जी,
1: जबकि ये सारी चीजें आपस में गहरे तौर पर संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसको उन्होंने समझाया गांधी जी।

0: ने, और उसको उन्होंने एक उनके ही एक बिंब का सहारा लें, तो उन्होंने एक सामुद्रिक वलय का सिद्धांत दिया था, जिसमें आप इसको ऐसे समझें कि कोई तालाब का शांत पानी है और आप उसमें कोई कंकड़ फेंकती हैं, तो उसमें एक छोटा सा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर
1: जी
0: एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त, जब तक उसमें करंट है, उसमें ताकत है, वो वृत्त बनता जाता है, और सारे वृत्त एक दूसरे के अधीन रहते हैं लेकिन स्वायत्त रहते हैं। तो दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इसी तरह संबद्ध है, व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, गांधी जी जिसको ग्राम स्वराज कहते थे, तालुका, जिला, राज्य, देश,
1: देश
0: और फिर दुनिया, फिर
1: जी
0: ब्रह्मांड, और ये सारे सवाल आपस में संबद्ध हैं। और अब तो

0: नेपाल आपस में संबद्ध हैं। और अब तो तकनीक ने हम सबको ग्लोबल विलेज कह दिया है, या पुराने समय में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई संकट आ रहा है तो बिल्कुल हजारों मील दूर के हिस्से में भी उस संकट का असर दिखना शुरू हो जा रहा है। और कोविड के प्रश्न के बाद तो ये और भी साफ साफ दिखने लगा है।
1: जी,
0: तो गांधी दरअसल बताते थे कि कहीं भी तुम अगर कुछ अन्याय करोगे, कुछ गलत करोगे या सभ्यता के प्रतिकूल कोई काम करोगे तो उसका असर सब पर होगा जिस पर तत्काल न दिख रहा हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो सोचता हो कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सबेर वो भी उसकी जद में आएगा, उसके असर में आएगा ही।
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ब्रेक चाह रही हूँ आपकी पसंद का गाना श्रोताओं को सुनवाना।
0: जी, आदमी और इंसान फिल्म का गीत है,
1: जी
0: जागेगा इंसान जमाना देखेगा।
1: जी

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अब कि गांधी जी का एक सादगी का सिद्धांत भी था कि हम जितने सादा रहें उतना अच्छा है। और एक हमारा जेनजी है जो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई नया फैशन आता है तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बनने लगता है या हमारी रोजमर्रा की चीजों में उसकी झलक दिखती है। तो कैसे गांधी जी के ये सिद्धांत हम अपना सकते हैं, कैसे हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रभावित कर सकते हैं?
1: दरअसल जिस तत्कालिक चकाचौंध में हमारा जैन जी या युवा पीढ़ी या हम सब लोग इसमें आते हैं, उसके असर में आते हैं, देखना ये है कि उससे हमारा जीवन सहज और सरल हो रहा है या हमारा जीवन और जटिल होता जा रहा है।
0: जी,
1: दरअसल सादगी के सिद्धांत के जरिए गांधी जी स्वावलंबन के दर्शन की प्रस्तावना कर रहे थे कि आप स्वावलंबी हों,

0: क्या हम इसके साथ साथ पलट कर ये पूछ सकते हैं कि जो लोग सादगी के सिद्धांत के विपरीत आचरण कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो भी ट्रेंड में है वो सारी चीजें हमारे वार्डरोब में होना चाहिए, वे स्वावलंबी भी हैं, और इन सारे ट्रेंड की वजह से क्या उनका जीवन सहज और सरल हो रहा है या उनका जीवन और मुश्किलों से भरा रह रहा है? क्या उनका भविष्य सुरक्षित बन रहा है या उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है? वे जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ रही है या उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं? अगर इन कसौटियों पर देखें तो वो गांधी जी हो या कोई भी पुरखे का विचार हो, वे सबको समझाई देती है कि जिसमें आपको संयम के साथ भोग की बात कही गई है
1: जी।
0: हमारे यहाँ उपनिषद का एक मंत्र है तेन तक्तेन भुंजिक्था, कि आप उपभोग करें लेकिन उसमें एक संयम भी हो, आप अपने लिमिटेशंस को भी जानते रहें। घर पहले कहा नहीं जाता था कि आप पांव उतना ही पसारें चादर जितनी लंबी हो
1: जी।
0: तो दरअसल अगर चादर लंबी नहीं है और पांव पसारते जा रहे हैं तो फिर कर्ज में दबते जा रहे हैं, फिर मुश्किल और अंततः अपना ही जीवन संकट में आ रहा है
1: जी।
0: तो सादगी के सिद्धांत और सादगी के सौंदर्य की स्थापना करके गांधी जी सबके जीवन को सरल और श्रेष्ठ बनाने की बात करते थे। अब ये चॉइस हमारे आपके या युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो उसमें से क्या चुनता है।
1: जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब जिक्र किया तो उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए जहां हमारे युवा कहीं गांव का पोखर साफ कर रहे हैं तो कहीं समुद्र से कचरा निकाल रहे हैं, कभी साथ मिलकर जो है वो कचरे को कैसे अलग करना है उसके निपटान की बात कर रहे हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं। आप बताएं कि कैसे ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं ये युवा ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाती हैं और कैसे ये हमें अपने समाज से बेहतर तरीके से जोड़ती हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत सकारात्मक और खूबसूरत उदाहरण है। आप समझिए कि जिस दौर में ज्यादातर लोग व्यक्तिवादी और अपने बारे में ही सोचने वाले आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं
1: जी,
0: उसी दौर में एक युवाओं का बड़ा तबका यह भी कर रहा है कि वो प्रकृति और पर्यावरण और सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक संस्थानों या संसाधनों के प्रति वो चिंतित है, सचेत है और उस पर कदम भी बढ़ा रहा है
1: जी,
0: उसको एक्शन में भी लाने की कोशिश कर रहा है। और ये उदाहरण तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों का जिक्र किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उन सब जगहों से आ भी रहा है
1: जी।
0: और यही बताता है कि दरअसल मनुष्यता की संभावना शेष है। यही बताता है कि समाज में ऐसी सज्जन शक्ति, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। अब क्या हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दुनियादारी की कसौटी में ऐसे लोग आएंगे इनको माना जाना चाहिए कि नहीं? दरअसल यही लोग हैं जो दुनिया की चिंता कर रहा हो अपनी चिंता के साथ साथ
1: जी,
0: वही दुनियादार है। हमें दुनियादार की परिभाषा बदलनी होगी और कहना होगा, और प्रैक्टिकल की भी परिभाषा बदलनी होगी। प्रैक्टिकल वही है, अगर हमारे पड़ोस का तालाब साफ नहीं है, हमारे यहाँ पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं? प्रैक्टिकलिटी तो यही है, व्यवहारिक बुद्धि तो इसी में है कि हम अपनी पृथ्वी के पानी के स्तर को ठीक रखें, अपने आसपास के तालाब को साफ करें, और चूंकि हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते तो अपने ही तरह के लोगों को खोजें या अपने विचार से लोगों को जोड़ें और कारवा बनता चला जाए।
1: जी,
0: हम अपने पड़ोस के नदी, पड़ोस के समुद्र को अगर नहीं साफ कर सकते तो उसका दुष्प्रभाव अंततः हम ही पर पड़ेगा। तो व्यवहारिक होना, दुनियादार होना यही है कि इन सब चीजों से अपने को जोड़ लें। और ये इतना खूबसूरत नजीर है जो बताता है कि उसी समय में जब लोग अपने से दूर देखना नहीं चाहते, सबसे अपने को काट कर देखने का एक दर्शन का अनुपालन कर रहे हैं, उसी समय में ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों या मुंबई के हों, जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, वे सब नदी की, तालाब की, बावड़ियों की या समुद्र की सफाई करके अपने को उससे जोड़ रहे हैं, संबद्ध कर रहे हैं।
1: और हम वो संस्कृति रहे हैं जहाँ प्राकृतिक उपादानों की पूजा होती रही है,

0: हम आज भी हमारे तीज त्योहारों पर नदी के जल को पूजा जाता है, तो समुद्र मंथन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो हमारा ये एक तरह से कर्तव्य भी बनता है कि स्वच्छता से इन्हें जोड़े और इनका देख रेख जो है वो हम जिम्मेदारी से करें। एक और सवाल मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी, जब हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है जिसने बहुत सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा भी दिखाई और एक महत्वपूर्ण प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम का महात्मा गांधी रहे। आज जब हम उनका जिक्र करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि विरोध स्वरूप कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उस दौर में जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है बहुत सारे नामों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है तो क्या ये अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करना है या उनकी अवमानना करना है?
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति किया जाने वाला सम्मान किसी के प्रति असम्मान या उनकी अवहेलना या उनका अपमान नहीं है। दरअसल वो भारत की आजादी की लड़ाई के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ को सबसे अधिक महत्व मिलता ही है। उसके अलावा आप जिन लोगों की चर्चा कर रही हैं, उनका असर उस समय भारत की आबादी के अल्पांश में था
0: जी।
1: चाहे आप जिनका जिक्र करेंगी, अगर आप फिर तुलना करके देखेंगी तो जिस व्यक्ति का असर उस समय भारत के सबसे ज्यादा लोगों पर था वो महात्मा गांधी थे
0: जी।
1: तो जाहिर सी बात है तवज्जो उनको ज्यादा मिलेगी, पर सिर्फ इस वजह से तवज्जो नहीं मिल रही। दरअसल गांधी जी की राष्ट्र की जो कल्पना थी
0: जी,
1: वो उस कल्पना में भारत का विविध समाज और अलग अलग स्तरों में विभक्त या अलग अलग तरह का दिखने वाला समाज का सारा अंग शामिल था। दरअसल गांधी जी किसी एक समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, किसी एक समाज के हित की चिंता नहीं कर रहे थे, चाहे वो समाज जाति के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर जो लोग आजादी की लड़ाई में हमारे जो पूर्वज लगे हुए थे, दरअसल वे किसी तबके के प्रतिनिधि के तौर पर थे। गांधी जी इन सबके नेता के तौर पर थे
0: जी।
1: तो कमांडर इन चीफ की या जिसकी राष्ट्र कल्पना में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, सबकी पीड़ा को अधिकाधिक दर्ज किया जा सकता हो, जिसका पाठ इतना व्यापक हो, जिसमें सबकी आवाज को समाहित किया जा सकता हो और जो इतना सहिष्णु हो, जो अपने से असहमत के साथ भी खुले दिल से बात करने को तैयार हो और अपने कमी आने पर अपने को सुधारने को भी तैयार हो, जो इतना संवाद धर्मी हो, इसलिए इनको सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। पर इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी सारे राष्ट्र नायकों को हम पीछे छोड़ रहे हों, इनके सम्मान में उनका अपमान नहीं है। जहां तक बात है भिन्न भिन्न दृष्टियों की, तो ये देखना होगा कौन सी दृष्टि सबसे ज्यादा समावेशी है, कौन भारत की विचार और ज्ञान के महान परंपरा का वाहक है जिसमें सबके लिए जगह है, कौन अधिक करुणामयी है, कौन सर्वाधिक उदार है। और इस कसौटी पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही दिखेंगे। अब एक दूसरी बात मैं यहीं दर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ हमारे वो पूर्वज जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो हिंसा में यकीन करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दरअसल उनके प्रति भी गांधी जी के यहाँ कोई दुर्भाव नहीं दिखेगा। पर उनको सिर्फ ये लगता था कि हिंसा के आधार पर ना तो आप आजादी पा सकते हैं और ना आप एक नए किस्म की सभ्यता की रचना कर सकते हैं। ताकत के आधार पर ली गई आजादी को निभाने के लिए भी उससे अधिक ताकत की जरूरत पड़ेगी
0: जी।
1: आप ये भी गौर करिए कि गांधी जी से पहले भी हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने 1857 का युद्ध लड़ा था। 1857 की जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी
0: जी,
1: या उसके पहले जो हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जो आजादी की लड़ाई अपने अपने इलाकों में लड़ी थी, उन सबको कुचलने में अंग्रेजों को बहुत बहुत आसानी हुई। किसी भी दौर में किसी भी सत्ता के लिए अहिंसक संघर्ष, सत्याग्रह के संघर्ष को कुचलना बेहद कठिन है, क्योंकि वहां लड़ने वाला निर्भीक हो जाता है। आप गौर

0: करें हिंसा के जरिए कोई कार्रवाई करने वाला सत्ता से हमेशा छुपने की बात करता है, पर अहिंसा के जरिए अपनी मांगों पर अडिग निर्भय बनकर उसके सामने खड़ा रहता है, वो अपनी बात कहता रहता है और ताकतवर से ताकतवर सत्ता को झुकना ही पड़ता है, सोचना
1: जी
0: ही पड़ता है।
1: जी एक और प्रश्न मैं यहाँ आपसे ये करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस समय हर उम्र के श्रोता आपको सुन रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे युवा साथियों के मन में ये विचार आए कि वो गांधी स्मृति से जुड़ना चाहते हैं या गांधी दर्शन को समझना चाहते हैं, दर्शन समिति से जुड़ना है, तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या कोई भी व्यवसायी हो या फिर वो छात्र हो वो जुड़ सकते हैं ऐसे?
0: बिल्कुल, गांधी दर्शन और गांधी स्मृति तो दो संस्थान हैं जो
1: जी
0: दोनों मिलकर फिर एक हुए हैं, वो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उसकी
1: जी
0: स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये राजघाट के पास हैं, वहां राजघाट बापू की जहां समाधि है वहीं पर एक दफ्तर है, और दूसरा वहीं पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है जहां गांधी जी से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को रखा गया है, और जिसको गांधी स्मृति हम कहते हैं, जहां गांधी जी की हत्या की गई थी वो स्थल है।
1: जी
0: तो उन स्थलों पर अभी भी प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं और वहां किसी किस्म की बंदिश नहीं होती, कुछ एक अवसरों को छोड़कर, जिस दिन वहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सुरक्षा कारणों से उस दिन कुछ कुछ अनुशासन रखा जाता है। पर गांधी का विचार तो सबके लिए है, गांधी की फिलॉसफी तो सबके लिए है, उसमें सबके लिए जगह है।
1: जी
0: दरअसल जो न्याय की कामना रखता है और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना की बात करता है, उन सबके लिए उनका रास्ता, उनका दर्शन खुला हुआ है और वे सबके लिए हैं, वे
1: जी
0: सबके हैं।
1: जी बहुत अच्छी पंक्ति आपकी ये, वे सबके हैं। कहा जाता है गांधी समसामयिक है, गांधी प्रासंगिक है और गांधी सबके हैं। गांधी चिंतन या गांधी विचारधारा को हम किसी एक कालखंड से नहीं जोड़ सकते, किसी एक घटना से नहीं जोड़ सकते। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमने बात की बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता, बापू का मूल मंत्र जो कि हमेशा प्रासंगिक रहा है, हर समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, समाज के प्रति हमें अधिक जिम्मेदार बनाता रहा, और अगर ये कहा जाए कि हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाता रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रहे गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से भी आप जुड़े रहे। गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के आप संपादक रहे हैं। गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक रहे हैं। आज कार्यक्रम में बेहद रोचक तरीके से, बेहद ही सादे शब्दों में आपने हमें गांधी दर्शन के बहुत सारे बिंदु जो हैं वो समझाए, जो आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो राजीव जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लूंगी। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भू की, खींचते काल पर अमिट रेख। तो एक काल पर खींची गई अमिट रेखा हमारे गांधी जी, बापू जी, जिनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने फिर से इन कुछ विचारों को जिया है। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही

0: रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया
0: मोना। 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां-6ठा स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर 4था स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार 1 ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा

0: भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी। उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया। पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें

0: तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे हैं। तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा, दो गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, दो मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, तीन गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है।
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर तीन गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं है, खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशियाई स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने दो पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी दो प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके, उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आए लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा

0: प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए, सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल है उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए, टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे, लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।